सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर करतल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक

तब चर नन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काबू, आप हाथ दे मुहे बचाबो। सुखी बसे मोरू परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मूर्छा निज कर दे करे।

पर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं। आप आदे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तुझ जू कर।

कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं स्मट पयो।

तुम करो। सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे अस्त सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे। पुरख

है सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर है तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए न हर हूं, ताके ताप तनक मैं हर हूं, रिद्ध सिद्ध कर

सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने सिरे असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखाने दोहरा

सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दों ता गाव हो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख

ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरता।

साध जना के संग पौ जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस

शासन करी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती सबर कहे गुरु नानक लई त्याय फिरंकित गुरते अमरदास रामदास से वैसे अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दर दरते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हों नाम जपया वन चख्या देख चलाई देख वाही देख निढ कीता देना प्यार से प्यार की कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंह सिंघनिया धर्म ये शीर दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइया चरखड़िया चढ़े आ रहे नच रहे हैं गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तेना की कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। गुरुद्वारे अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेता है चित आमण का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान कीर्तन रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की आज पंथ सदा सहाई दार जियो गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जी पंथ बिछोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दार तो सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया न्यासरे गुरु धन धन विरोध तार पिता जी हो आप चैन कामना दरदास दार जी आपने बख्शिश की आप चैन पितर गुरबाणी सुखमणी साहब संपूर्ण पाठ दिता इस वे संध्या समा जान के आप चैनल सोदार रहरा सब पाठ की दिन कृपा करो वो यहां भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड प्रदान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदा विचार की बात करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी विचारी बाल बुद्धि बख्शिश करो इनवाज इस खुशी में आप दख्शिया दाता बिचो पितर कर आप सारी देगा तैयार कर हजतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार जी दुख कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश विदेश रखा बख्शिश करो जी ये गरीब नवाज बख्शिश करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंह सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकरण बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बच्चे की पालता करो गरीब नवाज कृपा कर दतार जी आप जी बख्शिया दाता जो लंगर चुट सवारियां प्रवान कर दी गुरु गरीब नवाज ऐसे वे दर से आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सांचा दर से तेरे फुल पेटा प्रवान शुभकामना संपूर्ण करो जी गिरुराज आप चरण खाव जगदास गुरु साहब सच्चे पातशाह जी आज के दर के सेवादार मिस्टर डैरिक गृहस्थी गिरुराज जो गवर्नर की इलेक्शन लड़ने दतार पिता जी तो कामयाबी वास्ते चाजकला वास्ते बेनती करते आप चरण हाजिर होने दतार कृपा करो मेरे पर मिस्टर डैरिक गृहस्थी ने सेत रखना अपने सेवक नक्षता बख्शो अपने सेवक न कामयाबी बख्शन की बात करो गुरु जी गुरुवाज मेरे को सत्य पातशाह जी दरतिया की आप लाख पलो गुरु गुरुवाज खालसा कौम पंथ नाशाही खालसा पंथ सिख कौम एक दस भाग प्यार जी बख्शी करके सत राज बख्शो चानना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह कबालता करो जी गुरु जी गुरुवाज कृपा करो दूर दराज कर बैठिया लाइव कटा की सरण करियां सारी संगत हाजरी प्रवास को घड़िया लिख लो तारा भी कृपा की संगत उन्होंने बख्शे संगत आदि चरण धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर में गुरु घर सेवा सिंह संगत माया बेटा के चरण प्रवान करो बचकर सब कमाइया सफल करो कार्यवाद बदतार सब संगत दुभकामना सरवा पूरी करो जी और मेरा करो सेवा प्रवान करो पुला चुका की माफी बख्शो फिर नाम बख्शी करके बुरा अज के शाम के कथा की दुराज रमता वास्ते आगा बख्शो रेंदे घर सुहार के चरण सुना दी बनाओ सही प्यारे मेरे जिला बनाव का नाम दिता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

साजना की अचर्ज कथास्तुपदी साध के संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे प्रवनीरा साध संग सब होत निवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेनु साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतूं तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्नु साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्नु साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साध के संग न बिगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग वसै थान उच्चे साधु कै संग महल पहुँचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बानु साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुक तहर साध के संग नरक पर हर साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नान कुदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगे परम मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न पेखै किस बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान जैसे राज रंग कौ लागै तुल्फवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेख ज्यों बसदा को खुदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाओ नानक ज्यों पाव का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना तम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी के कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग
ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवारु, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागतु, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागतु, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाशु, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता, ब्रह्म ज्ञानी संगहिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खूजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उतार है जो अंतर नाम शर्म में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार है, मिथ्या ना ही रसना वर्ष, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेख्या नेत्र, साध की टैल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जान आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना, मन ते टरे इंद्रिय जित पंच दोक ते रहत, नान कूट मदे को ऐसा पर सुबह सुनो सोजी, सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए पेन, कर्म कर्त हु वह नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का हु, फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वर नाम जपावे, नानक वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला परम कर पूजे, सगल पार ब्रह्म सा सुन पापा मल खो वह, तुष भगवती की मत उत्तम हो वह, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंथन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का बदे जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल, चौवरना को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोय, कर कृपांतर उतार है, पस प्रेत मुक्त पात्र को तार है, सर्वलोक का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम, काहू जुगत कितै न पाइये, धर्म नानक तिस

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया भाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीप लो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनाए मुख सालाहन मंद सुनाए जोग जुगत तन भेद सुनाए शास्त सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए सत संतोख ज्ञान सुनाए अठ साठ का इशनान सुनाए पढ़ पढ़ पावै मान सुनाए लागै सहज ध्यान
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੋ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੋਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਾਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਾਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ

किया जाए। अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाख चरणी सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त न पाए, आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी, बाणी ता गाव हो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी, पीवो हो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारिंग पाणी। कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलिया सचे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव साकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एकस स्यो लिवलाए, कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जानी, ततै सार न जानी गुरु बाजहु ततै सार न जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया। बोलह अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वडदाता। जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओसनो के हो पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वडदाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता है खेल रचाया। जात इस पाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह पुजै पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका, जिन हर पले पाए। हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वन जारा, ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए। हर रस पाए पलै पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुरु मिलै जिस आए। कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी तातू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच तातू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातू जग मह आया।
मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया यह विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जावे खा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सात गुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुन

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू

सुख मन वसै, दुख संसार है खोवे, गुर नाव निद दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सह

0: सत्य सप्ताम सत्य सुभजोर सच्ची तेरी तृप्ति सत्य चालाह सच्ची तेरी कुदरत सत्य पासा नानक सत्य ध्यान सच जो मृत मैं सो कच निकट महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सच नि आओ वड्डी वड्याई जाने चल था वड्डी वड्याई जाने अलाव वड्डी वड्याई पूजे सम भाव वड्डी वड्याई जा पुछने दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथनी जाय कीता करना सर्व रजाय महला दूजा
2: ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इकना हुक्म समाले इकना हुक्मे करे विनाश

विषमा धरती समाध खाणी समाध चाल के प्राणी विषमाद संयोग विषमाद विजोग विषमाद भोग विषमाद भोग विषमाद शक्ति समाध साला

0: इत संजम दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन सचो सस्ती आया, उन्नी बंदे पैणा रखियो कर सुखी धर्म कमा।

गुरुग्रीवनिवास अंतर जमी तंत्र सहित से गुरु गुरु सहज मारो आज दी बाणी दे सत्कार जो बेअंत गुरु सिख माई पायो आज दी बाणी दे सत्कार जो बेअंत मार पेटा कर दे आप जन सार में सिखिता प्रोसादान चन्ना कमा प्यार बुझना खजाने पर पुरकने सो आओ गुरु प्यारी सत्संग जीव केतन दी इते समाप्ति हुई बोलना चुका दिखी मकनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए अज दे श्री महाराज दे विचार सत्कार योग यानी बचित्र सिंह जी उन्हां पासों गुर इतिहास सिख इतिहास सरवण करिए दास रूप फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.

सत संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाज भगवती पाशे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय बिरंकित गुरते अमरदास रामदास सेवे सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दया वैसा है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसम पाची ने पुत्रात्म क्रू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार त्यंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु गरीबनवाज आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चारे मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन चकिया दे चलाई तेग वाहे देख ढेट किया तेना प्यार है त्यारा नहीं कमाई दा त्यंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लगाईया चरखड़िया के जड़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी दे के सत्संग आया तेना नहीं कमाई दा त्यंतर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त गुरुद्वारे दा त्यंतर के बोलो जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खाते साहब तहन चरिया देव देव की फतेह पंथ की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रायत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग आटान धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत तुझे मत पत के राखे आप वाहे गुरु गुरु जी बलवाज पंथ सदा सहाय दताज दियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब सुर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ में छोड़या गया प्रदर्शन राज सेवा समाया था अपनी खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसर दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दुआए कर जोड़ करो अरदास तुझ पावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण कामना अरदास में आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान हुए संगतान दर्शन दर्द के निहाल उतार दियो बेहद बाणियों के पास अज में रागी सिंह ने आपके चरण आशा की वार्ड कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने अज के हुक्मनामे की कथा विचार की कृपा करो वो यहां भुलां चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतान के हिरदे निशानी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध पुत्र बाणी विचारी बल बुद्धि बख्शिश करो वीर महाराज इस खुशी में आप जी दखियां दातों में पितर कड़ाप शादी टेक तैयार करके हाथ ततार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सा संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोकों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गरीब नवाज आप दखियां दातों जो नगर तुर सवार प्रवान करनी आपके चरण सेवा कार्य टहलिए सिंघा सिंघनिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करो बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शन की पालता करो गरीब नवाज जी अमृत वे तो लैके दर से आई साफ संगत दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गरीब नवाज जीओ से कौम खालसा पंथ नूं एकता सुभाग प्यार दी बख्शिश करके सत्संग रोज दाल बख्शो चानना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्शा की पालता करो जी गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज कर बैठिया लाइव खत्म की श्रमण करिए सारी संगत हाजिर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ गिरफ्तार पिता जी आपने बख्शे की संगत उदो बख्शे ने संगत आदि चरना धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया आ गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कारी चरना प्रवान करो बख्शिया साहब दमाइया सबल करो कार्य वजार सब संगत दुभकामना सबना तो पूरी करो जी दार मेहनत करे आओ सेवा प्रवान करो भुला चुके आज बख्शो पवित्र गुनामी बख्शे करो प्रांत लेडी वास्ते आज पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो शोधे के पुत्र सेवा लैंड की वार्ता करो रेंदे कार सुवार के चरना सुनवादी बनाओ से ही प्यारे मेरे जिन्हें नाम जता नानक नाम चढ़ती करा तेरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे

जो मन चित एक अराध दे, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े, तुदनो सब त्याए दी, सेथाए पए जो साहिब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खादे पहन दे, से मुए मर जम्मे कोड़े, ओए हाजिर मिठा बोल दे, बाहर विस कड्डे मुख कोले, मन खोटे दईए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वेमुख वेमुख है नो पाया, पास न देई कोई बहन जगत में, गुह पड़ सगवी मल लाए मन मुख आया।

से वचन हो वंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल कहंदे वे लोचन ओना गुणैनो वे अहंकार सड़ंदे वे विचारे क्या कर है जा भाग धुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करह निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे श्लोक महला चौथा।

गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छा सो फल पाई सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निदान सतगुरु विच जिसे अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिन को आ

स्वामी निंदका दुष्टा के मुंह काले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सुवाई हर कीर्त भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपहु गुर सिखहु हर करता सतगुर करी वसाए।

पौड़ी। एहो शरीर सब धर्म है, जिसे अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डै खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, एक दिख

चढ़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धूवै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर पुर धारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदर हो मन साधार।

गुरमुख गुण विहाजी है, मल होमै कड्डै धोए, सच वणंजह रंग स्यों सच सौदा होए, टोटा मूल न आवई लाहा हर भावै सोए, नानक तिन सच वणजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साला ही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी आराध्या से जाए रले सच नाले,

भाग सुलखणी जे खसमें चित करे भाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे सच्चा शब्द पुतार है।

पूजहै पूज करावहै। सतगुर कौ सृजन हारिया कोई विछुड़ जाए, सतगुरु पासहु तिस काला मुह जम मारिया, किसी अग्गै पिछै ढोई नाहीं।

जिनी एक मन एक आराध्या, तिनका कंध न कबहू छिजै। धन धन पुरख साबास है, जिन सच रसना अमृत पीजै। सच सच्चा जिन मन भावदा, से मन सच्ची दरगह लिजै। धन धन जन्म सचियारिया, मुख उज्ज

महला चौथा। सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर तारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई न सकई जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़ग संजो

पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है। सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादिया सच साहिब सच।

जो भावै त्यो रख तू, जन नानक नाम बख्श महला तीजा। मन मुख अहंकारी महल ना जाने, किन आगे किन पीछे, सदा बुलाइए महल ना आवे, क्यों कर दरगह सिझै।

पौड़ी। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने, जा सतगुर का मन मनिया ता पाप कसम्मल भन्नी।

समय की समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, बेअंत खुला हो गई हैं। आप जी बख्शन योग हो, बख्श लेना दाता जी, दया करन, कर्म करन, तरस करन, बख्शिश करन, अपनी रहमत भरी निगाह नाल साडे उत्ते बख्शिश भरिया खजाना नाम दियां दातां साडी झोली विच पाउण। मंगदे सारा कुछ हाँ, पर जेड़े देण वाले नूं भी मंग लैंदे ने, इंज कह लईए भी दाते नूं ही मंग लैंदे ने। दातां फिर मगर ही तुरियां आउंदियां ने। आओ अगलियां गुरमत विचारां साडे अपने पंथ प्रसिद्ध कथावाचक ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਦਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

जो समा हुक्म होया सी समय दी समाप्ति है। सतगुरु सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करन, एक जकारा वीरां नूं बेनती चढ़दी कला दा ते एक जकारा भैणां नूं, करो कृपा साहिब। समूह प्रबंधक साहिबान, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है। डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी, और भाई निर्मल सिंह जी, जिन्ह के उदम सदका, समूह प्रबंधक साहिबाना का सदका, अपना सारिया ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे, नाल ही अरदास।

शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख आत्मा ते परमात्मा दे दरम्यान दे विच बसीट दा काम करदा है, वकील दा विचोले दा काम करदा है। जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु विछड़े हुए न प्रभु मिलदा है। किवें उसकी पहुंच है हर दरगे का बसीट, तो गुरु ग्रंथ साहब जी का आप पहला प्रकाश मना पुरब मना रहे हैं। तो मेरे मन च आया कि क्यों ना अज आप सतगुरों के चरणों च जो सानू साहिब अरदास करनी सिखाते हैं अरदास के विषय से कीर्तन किया जाए। असल में सारी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब की अरदास ही है, सारी गुरबाणी उस परमात्मा की उस्तत है। जदों भी सिख किसी भी संकल्प नूं लै के अरदास करे गल ते आखर आण के मुक जांदी है जी, सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित्ता। सिख दी हर मंग दे विच नाम दी मंग हुणे ही सतगुरां दा आपां पावन बचन गा रहे सन जी, हे वाहिगुरु मेरी ये अरदास है तेरा नाम ना विसरे, दिन रात गावा ते जे तू कृपा कर दवे टुट जावे बख्शिश हो जावे मैनू तेरा नाम मिले। हर वेले असी नाम दी मंग करते हाँ क्योंकि जिसने नाम मंग लिया सब कुछ मिल गया। नाम वड्डी दात है। जदों आपां खरड़ा पढ़ते हैं ना जी अरदास करते हैं तो एक जिहड़ा साडे बजुर्गां ने एक पैरा बनाया ना, सिखां नूं सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान, सब कुछ नाम दे विच है। तो सतगुरु बख्शिश करे सानू गुरु की गल समझ पवे, असी पुरब मनाइए, साड़ी जिंदगी दे विच सानू मददगार होवे गुरु का शब्द हर वेले। आओ जी ये भी अरदास का शब्द मैं गायन कर लिया, तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। हे वाहिगुरु साड़ी तेरे चरणों में अरदास है, ये जो शरीर दिता है इसके अंदर जो आत्मा पाई है जो तू होर बख्शिशा कीतियां हन इसनों संभालन वास्ते इसनों पालन वास्ते सब तेरी रास दिती हुई, सब तेरी दिती हुई पूंजी है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना ना जाने मेरा, मैनू तो कोई नहीं जानता, ये सब तेरी वड्याई है तेरी बख्शिश है। मिलके गायन के